0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: साथी व्यापारी विश्राम के बाद फिर आप लोगों के स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे माँ। और कार्यक्रम दुआरे मुहारे माँ आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए और फोन लाइन में जुड़ के अपने पसंद के गीत संगीत सुना जाए, अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोगन का सुनावा जाए, खुद भी सुना जाए और से ही पड़ोस भारत के साथी लोगन के खातिर 00977-4-15-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए। तो साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए और कुछ हम कार्यक्रम के भी इन्फॉर्मेशन कराए दी आप लोगन के, यहाँ जानकारी कराए दी कि कौन कौन दिन ये प्रोग्राम आप लोग सुन सका जाते, जैसे कि कार्यक्रम जो है दुआरे महारे आप लोग हफ्ता में 3 दिन सुन सका जाते, जैसे कि आज इतवार है, आज इतवार के दिन आप लोगन के समझ फोनिंग प्रोग्राम लेके आवा जाते, फोनिंग प्रोग्राम में यहाँ आप लोग अपने पसंद के गीत संगीत सुना जाए। और ऐसे ही मंगलवार के दिन आप लोग भावना से संबंधित गीत संगीत सुन सका जाते और बुधवार के दिन झलक वाला प्रोग्राम रहते, वो झलक में यहाँ कोई भी गीत आप लोग झलक में जो झलक सुनावा जाए, गीत के झलक सुनावा जाते, वो झलक में से कोई भी गीत आप लोग पसंद करके सुन सका जाते, अपने तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोगन का सुनाए सका जाते। और बाकी 2 दिन सोमवार और बिहार आप लोग जो है किराव मियाँ जी के साथ माँ कार्यक्रम चना जोर गरम सुन सका जाते साथी, और जिसे कि और शनिवार जो बचा, शनिवार के दिन आप लोग घर अंगना कार्यक्रम सुन सका जाते संध्या शर्मा जी के साथ माँ और हम भी रही थे, तो यानी कि 6 दिन आप लोग ये प्रोग्राम जो है सुन सका जाते दुआरे मुहारे चना जोर गरम घर अंगना, हाँ 1 बजे से 3 बजे तक साथी सुन सका जाते। खैर आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रहा जाए, अब हम चली थे व्यापारिक विश्राम की तरफ, व्यापारिक विश्राम के समय हो चुका है तो चला जाते व्यापारिक विश्राम की तरफ।
1: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ,
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू

0: सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिंग होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081531366 र 98085549451।
1: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलेसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बालरोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 98145689। 081530220 र 98145689।
2: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डाले, नाय ठीक आत है।
3: सुनो बहिनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
3: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081531000।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी।

0: बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
1: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ।
0: होप इन्टरनेशनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 081551462 98584462 र 98582046।
2: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: यो तरंग रेडियो कृष्ण सार को हो। स्टूडियो टाइम चेक।
1: अहिले दिउँसोको 2 बजे हो।
2: घुडामा चोट लागेर वा नलागिकन हुने दुखाई, घुडा सुन्निने, घुडा फुस्केको, हड्डी खिएको, भर्याङ चढ्न गाह्रो हुने, भर नहुने, आवाज आउने, एसीएल पीसीएल लिगामेन्टको चोट लगायत घुडा सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको सही परामर्श र उपचारका लागि
3: डाक्टर तीर्थेन्द्र खड्का, मामा मेडिकल्स, भास्कोडा मार्केट, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, नेपालगञ्ज। सम्पर्क नम्बर 98487235।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेरे के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड, नेपालगंज, बांके। संपर्क नंबर 98448835375 और 98085240437।
6: नींद ना आए हमको, जग सोना
7: है। मानसिक समस्याबाट बस्ने उपायहरू,
8: आफ्नो बारेमा अरूसँग खुलेर कुरा गरौं,
7: स्वस्थ खानपिनका साथै राम्रोसँग सुत्ने गरौं,
8: दैनिक शारीरिक व्यायाम तथा योग ध्यान गर्ने गरौं,
7: काममा व्यस्त रहने र अनावश्यक तनाव नलिऊ,
8: असल साथीहरूसँग मात्रै संगत गरौं,
7: मादक पदार्थ र लागू औषध सेवन नगरौं,
8: नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरौं। मानसिक समस्या भएकाहरूले अन्य रोगहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचापको औषधि नियमित सेवन गर्ने गरौं।
7: स्वस्थ रहौं, अरूलाई पनि स्वस्थ रहन सल्लाह दिऊ।
9: नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। आप लोग सुना चाहते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित होला कार्यक्रम दुआरे।
2: हाय प्रज्ञा, सवेरे से रेडियो लिए बैठो, का सुनत हो?
3: अरे मामा, तुम नहीं जानत हो, कार्यक्रम दुआरे मुहारे आवत है।
2: ये कब और कौने दिन आवत है प्रज्ञा?
3: सुनो, बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आवत है।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुने का न भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम दुआरे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: हाँ साथी आप लोग प्यारा सा गीत सुनागा प्यारा सा गीत सुनागा खूबसूरत सड़कों पे कभी कभी इत्तफाक से हाँ राजेश खन्ना के फिल्म से राम। तो खैर अब साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए, सुनिए क्या 415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए और अपने पसंद के गीत सुना जाए, तमाम सब साथी मित्र लगाए सब लोग उनका सुनावा जाए और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 00977-81-415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए, फटाफट नंबर डायल करा जाए और अपने पसंद के गीत सुना जाए, तमाम सब साथी मित्र लगाए तो सब लोगन का सुनावा जाए, खुद भी सुना जाए। कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन आप लोगन के समझ ले के आई थे, जैसे कि आज इतवार है, इतवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन दुआरे मुहारे आप लोग सुना जाए और के बाद बाकी जो 2 दिन बचा सोमवार और बिहार के दिन कार्यक्रम चना जोर गरम मियाँ जी के साथ आप लोग सुना जाए और ऐसे ही शनिवार के दिन घर अंगना संध्या शर्मा और चंदा के साथ माँ, यानी कि हम दुजना शनिवार के दिन कार्यक्रम घर अंगना लेके आवा जाते हैं और बाकी दिन सब लोग मतलब 6 दिन आप लोग ये प्रोग्राम के यहाँ अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से सुन सका जाते हैं। ओके जो है कार्यक्रम के रूल्स ओके कार्यक्रम के जो मतलब होत नहीं है कार्यक्रम कौन मेर के आवत है, जैसे अब 2 दिन फोनिंग प्रोग्राम होगा दुआरे मुहारे में या फोनिंग प्रोग्राम होगा एक अपने पसंद के फरमाइश करके जो कि आज इतवार के दिन है और बुधवार के दिन झलक वाला प्रोग्राम लेके आवा जाते उमा गीत के झलक होते और झलक में यहाँ कोई भी गीत जो रहा थे उमा आप लोग पसंद करके सुन सका जाते। तो ये फोनिंग प्रोग्राम होगा मनोरंजन वाला गीत संगीत वाला और एक दिन दुआरे मुहारे में एक दिन जो है भावना से संबंधित गीत संगीत लेके आवा जाते और बीच बीच में यहाँ गीत गज़ल भी लेके आवा जाए आप लोगों के समझ साथी। और जो 2 दिन है सोमवार और बिहार तो सोमवार में आप लोग पहली वाला कार्यक्रम सुन सका जाते मियाँ जी के साथ में कार्यक्रम चना जोर में चना जोर गरम में यहाँ कार्यक्रम में और ऐसे ही बिहार के दिन चना जोर गरम में आप लोग कव्वाली वाला प्रोग्राम सुन सका जाते उमा भी पुछौर ही वाला रही है पहली वाला तो खैर उमा गीत संगीत नहीं कव्वाली माँ सुन सका जाते बिहार के दिन हिरा मियाँ जी लेके आवत है जो कार्यक्रम चना जोर गरम। और शनिवार के दिन आप लोगन के समक्ष कोई नया विषय वस्तु लेके आवा जाते वही टॉपिक पर यहाँ वही विषय वस्तु पर यहाँ बातचीत करा जाते और महीना के अंतिम शनिवार के दिन जो है फोनिंग प्रोग्राम भी रहते जिमा आप लोग अपने सलाह सुझाव दे सका जाते प्रोग्राम कैसा लगत है उमा आप लोग सलाह सुझाव भी दे सका जाते लेकिन का है कि उमा जो रहते दुई लोग आवत हैं हम लोग जिसे हम रहे थे हम चंदा और संध्या शर्मा जी रहती। तो साथी ई तो रहे 6 दिन के पूरा प्रोग्राम के जो है इन्फॉर्मेशन जानकारी रहे ई दिन ई कार्यक्रम आवत है कौन मेर के कौन कार्यक्रम आवत है आप लोग जान गवागा हुई और जो लोग नहीं जानत हुई हैं तो आप लोग जो जानागा हुई तो अपने साथी भाई सब लोगों का बताया दिया जी है कि प्रोग्राम ये दिन ही आवत है फरक फरक के तरीके से रहते प्रोग्राम 6 दिन प्रोग्राम रहते। खैर अब साथी हम कार्यक्रम ठीक है अब व्यापारिक विश्राम के तरफ पहले चला जाते इसके बाद आप लोग प्यारा सा गीत सुन सका जाते आप लोग फोन लाइन से जुड़ते रह जाए 0815-122 के लाइन पे आप लोग आते रह जाए।
1: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
2: सूचना सूचना सूचना निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सम्बन्धी सूचना।
3: नवील निशुल्क जलन सर्जरी तथा परामर्श शिविर सम्बन्धी सूचना।
2: लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नवील बैंक र सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा नवील निशुल्क जलन सर्जरी शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको छ।
3: मिति 2083 वैशाख 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म।
2: स्थान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दा।
3: उपचार हुने मुख्य समस्याहरू:
2: आगोले पोलेर शरीरको भाग खुम्चिएको वा चलाउन नमिल्ने,
3: पोलेका कारण हात खुट्टाका औँलाहरू टाँसिएको,
2: पोलेर टाउको कपाल गुमेको,
3: एसिड आक्रमण वा विस्फोटनमा परि जलन भएका,
2: जन्मजात हात खुट्टामा 5 भन्दा बढी औँला भएका वा पैताला भित्र फर्किएका।
3: विशेषता:
2: वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जनद्वारा पूर्ण रूपमा निशुल्क शल्यक्रिया तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
3: थप जानकारी वा नाम दर्ताका लागि अस्पतालको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला।
2: विस्तृत जानकारीका लागि 9853500076 अथवा 9841553555।
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
6: सुन्नु न, यो हाम्रो बिहे पछिको पहिलो यात्रा हो सिर्फ हामी दुईजनाका लागि।
7: हो त, हात समातेर हिँड्दा संसार अझ सुन्दर लाग्छ। कतै विशेष प्याकेजमा घुम्न जान पाए झन् कति राम्रो हुन्थ्यो। कहाँ होला र त्यस्तो सुविधा खोइ?
6: किन चिन्ता लिएको नि हजुरले? न तयारीको झन्झट, न कहाँ बस्ने अनि कहाँ खाने भन्ने चिन्ता। घुम्ने रुटको सबै व्यवस्था छ, घरदेखि लिएर फेरि घरसम्मै पुर्याइदिने व्यवस्था छ, मात्र नेपालगञ्ज न्यु रोड स्थित तुलसी होलिडेजमा। हजुरलाई थाहा थिएन र यो कुरा? मलाई त धेरै पलदेखि थाहा थियो नि।
7: अह, कति बाठी! बिहानको सूर्य, साँझको मिठो हावा, आहा! तुलसी होलिडेजको विशेष प्याकेजमा सस्तो मूल्यमा घुम्न पाउने भएपछि हाम्रो यो यात्रा निकै मिठो अनि रमणीय हुने भयो। उसो भए यात्रा आजै सुरु गरौँ न त। तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल्ससँग आजका लागि मात्र होइन, सधैँका लागि सम्झनै पर्ने नाम रहेछ।
6: हजुर, स्वदेश होस् या विदेश, तपाईँ जहाँ जुन देश जान चाहनुहुन्छ, टिकट बुकिङदेखि भिजासम्म, होटल बसाई र सम्पूर्ण व्यवस्थापन छिटो, सजिलो र भरपर्दो छ।
7: साथै परिवारसँग रमाइलो पल, हनीमुनका अविस्मरणीय सम्झना, सफारी, समूह टुर र हरेक यात्रामा खुसीको अनुभव साथमा पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, कर्पोरेट टुर होस् वा शैक्षिक भ्रमण, तपाईँको चाहना अनुसार बनाइदिने विशेष प्याकेजहरू पनि उपलब्ध छन्। अब ढिला नगर्नुहोस्, आजै बनाऊ घुम्ने योजना।
6: सम्पर्क तुलसी होलिडेज टुर्स एन्ड ट्राभल, न्यु रोड, नेपालगञ्ज।
7: सम्पर्क नम्बर 9585535553 र 9812235553। इमेल info@tulsiholidays.com।
8: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सुन्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ, मुटु।
9: राम्रो शिक्षा सधैँ महँगो हुनुपर्छ भन्ने छैन। कम शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कुल हो जय बागेश्वरी विद्या निकेतन, नेपालगञ्ज 17 परसपुर। यहाँ पढाइ हुन्छ अन्तर्क्रियात्मक, विद्यार्थी केन्द्रित र प्रयोगात्मक तरिकाबाट। पढाइसँगै खेलकुद, सङ्गीत र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत विशेष जोड दिएको हुँदा सिकाइ अझ प्रभावकारी छ। न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक टोली भएको, कम्प्युटर र साइन्स ल्याब भएको, अनुशासित तथा सुरक्षित वातावरण, खाने पानी र बसको सुविधा भएको, पर्याप्त खेल मैदान भएको, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड। नयाँ शैक्षिक सत्र 2083 लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। आजै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। सम्पर्क जय बागेश्वरी विद्या निकेतन, नेपालगञ्ज 17 परसपुर। फोन नम्बर 9815494585।

0: हाँ साथी, व्यापारी विश्राम के बाद फिर आप लोगों के स्वागत है कार्यक्रम घर दुआरे मुहारे माँ। हाँ तो साथी, अब जो है आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए, 0815-415 के लाइन पे आप लोग आवाज जाए, फटाफट नंबर डायल करा जाए और अपने पसंद के गीत सुना जाए। तमाम सब साथी मित्र लगाए तो सब लोगन का सुनावा जाए, खुद भी सुना जाए। पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगन के खातिर 0097781-415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए और जो बजे वाला गीत है तमाम सब साथी मित्र लगाए तो बजे वाला नहीं, मतलब अभी फरमाइश ही नहीं हुआ है, तो आप लोग आए के अपने पसंद के गीत फरमाइश किया जाए और वो गीत आप लोग जो है सब लोगन का सुनावा जाए और खुद भी सुना जाए, सब लोगन का सुनावा जाए साथी। और ऐसे ही फ़ोन लाइन से जुड़े के खातिर आप लोगन का हम नंबर भी बार बार बताए थे, तो कोई साथी है उनके स्वागत किया जाए। जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, को कहाँ से?
1: जी हम गाय घाट भग्गापुरवा बहराइच जिला से बोले थे।
0: गाय घाट से भग्गापुरवा।
1: मनोज कुमार
0: मौर्या है ना
1: जी।
0: मनोज जी और बतावा जा, क्या हाल खबर है आपके?
1: ठीक है, बढ़िया है। अरे हम कह रहे एक गाना के फरमान रहे मैम सुना दे।
0: गाना के?
1: हाँ, ये कव्वाली जो हजी यात्रा के कव्वाली है।
0: हाँ
1: हाँ, तो इमाम एक कोई भी कव्वाली मतलब सुना दीजिए।
0: हज मतलब हज वाला कोई कव्वाली है ना?
1: जी जी।
0: अच्छा मनोज, का बतावागा आप अपने नाम?
1: नाम?
0: हाँ अपने नाम का बतावागा मनोज का?
1: मनोज कुमार मौर्या।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मनोज कुमार मौर्या जी, ठीक है मनोज जी,
1: जी।
0: बतावा जाए कि जो ये बजे वाला कव्वाली की का सुनावे चाह जाते हैं आप?
1: अरे इतने तमाम शोर का लोग हैं, मतलब साथी बैठे हैं, ये हमारे धर्म प्रकाश जी हैं, राम प्रताप मौर्या जी हैं और मीना मौर्या बैठी हैं,
0: यानी कि आपके नाम से पहचाने वाले सभी लोगों का सुनावा चाहिए।
1: हाँ, सभी गांव के बैठे हैं।
0: अच्छा, हम कभी सुनावा जाई?
1: जी आप भी सुनो।
0: ठीक है,
1: आप भी सुनो और हमारे साथ में निया जी है, वो भी सुनेंगे।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद है सुनावे के खातिर मनोज जी। तो मनोज जी कार्यक्रम में फोन किया गाय के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम इजाजत चाहते हैं, नमस्कार। साथी ये रहे मनोज कुमार मौर्या जी, फोन करना है गाय घाट भज्जापुरवा से फोन करना है और गीत मतलब कव्वाली सुनने की चाहिए, हज वाला कव्वाली, कोई भी कहे नहीं कि हज वाला, मतलब जिसे मुस्लिम भाई लोग जो हज में जाते हैं तो उस वक्त जो हज वाला गाना होते मतलब कव्वाली होते वो का सुनने की चाहिए, तमाम सब साथी लोगन का सुनावा चाहिए। तो ठीक है साथी, अब हम चलते हैं व्यापारिक विश्राम के तरफ पहले और व्यापारिक विश्राम के बाद आप लोग प्यारा सा कव्वाली सुन सका जाते हैं, हज वाला कव्वाली।
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई की है से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ है शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जाता है।
3: जानकारी रहक चाहिए, कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
5: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
4: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
5: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
4: कस्तो खबर?
5: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, MD इन्टरनल मेडिसिन TU, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
4: ए साँच्चै?
5: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
4: ए त्यो त झन् राम्रो,
5: हो नि डाक्टर पूनम आचार्य एमबीबीएस एमडी केयू आईभीएफ स्पेशलिस्ट इंडिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबीबीएस एमएस केयू वरिष्ठ कंसल्टेंट जनरल तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन बाट सेवा पाइन्छ।
4: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
5: अझै अरु सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, ईसीजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
4: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
5: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
4: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861।
5: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848206697, 9858236697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
1: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
1: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

हाँ तो साथी आप लोग प्यारा सा गीत सुना जाते हैं, और यही गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम से विदा ले के समय हो चुका है हमरे। तो कार्यक्रम में फ़ोन करे वाले, साथ में फ़ोन ट्राई करे वाले, कार्यक्रम का ध्यान पूर्वक सुने वाले भी साथी लोगन का तहे दिल से धन्यवाद। तो साथी अब मंगलवार के दिन कार्यक्रम दुआरे मुहारे लेके 1 बजे कार्यक्रम दुआरे मुहारे लेके फिर मिले वादा करते यही अंतिम गीत के साथ हम चंदा का दिया जा विदा। नमस्कार।

0: व्यवसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
1: कृषि क्षेत्र म व्यवसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई
0: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
1: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
0: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
1: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
0: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके
2: In this song on Stay tuned.
3: Back to back.
2: In this song on Stay tuned.
4: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
5: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी
6: आमाको उपचार गरौं भनेको कहाँ जाने होला
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ
6: हो र यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि
7: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाइटेक अपरेशन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन् अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि
6: सम्पर्क नम्बर 081535717
8: हाय रे दिदिया हमार टिहुनी बहुत पिरात है बहुत दवाई कराए डाले नाय ठीक आत है
9: सुनो बहिनी खुशी के खबर कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई पित्त थैली के पथरी अपेंडिस हार्निया

0: हाइड्रोसील, बबासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन मैं लिंग ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, चंजनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन मैं सफेद पानी बहाव, महीनावारी मैं गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
0: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5031-31000।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त, पूर्वपट्टि
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गरा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घन्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घन्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-4-14-007 र 98-4-82-63-389।
6: Back to back, back to back.
7: In this song on
6: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी